0: यो नया वर्ष को अवसर में सीजी का टीवी एंड होम अप्लायंसेस को खरीद में आकर्षक कैशबैक तथा पक्का उपहार। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 2 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 1 केजी एरियल, माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग किट और एसी में फ्री इंस्टॉलेशन। नागरिकता भाईपुग सीजी एलेक्स ईएमआई मार्फत सजिले खरीद कर सकता।
1: यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्क को, जो तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
2: नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको मनसुनी वर्षा प्रभावित हुने प्रवृत्ति बढ़ेको छ। यसले मनसुनको समयमा खडेरीको सम्भावना बढ़ाउँदै नेपालको कृषिबाली जोखिममा पार्ने सम्भावना बढ़ाएको छ। मनसुन पूर्वको समय अर्थात अहिलेको अवस्थामा भने एकसाथ

एस आदि खोला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा।

0: मिनट में
1: आइए हम लोग आने में
0: 10 बजे तक था।
2: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल वालिंग 8 पेट्रोल पंप को नजिक जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: रेडियो आदि खोला 105 थोप्लो 4 आपने ख्याल रखना।

फर्किनै मन पराएर मलाई तडपाएर दाङका उदयमान नक्षत्र तीर्थक हस्पी पवन विरही पाण्डेको एक तीर्थकता अब शब्द शब्दमा सीआरबीटी नम्बर 01300045429 पीआरबीटी नम्बर 7045652 स्वर नरेन्द्र प्यासी संगीत संतोष श्रेष्ठ गीतकार एसएन पाण्डे पवन मोबाइलमा सीआरबीटी र पीआरबीटी डाउनलोड गरी

एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार छंगजा

TCL का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैश बैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट, वॉशिंग मशीन में 6 केजी एवियल मैटिक, एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ। ग्लोबल नंबर 1 TCL, इंस्पायर ग्रेटनेस।